तेरा मेरा रिश्ता, एक गाना जो दो जेनरेशंस को एक ही फीलिंग में बांध रहा है। और शायद इसलिए आवारापन 2 की कहानी मुझे सिर्फ एक सीक्वल की कहानी नहीं लगती, मुझे लगता है ये सिनेमा के एक खोए हुए हिस्से की वापसी है। एक वक्त था जब हिंदी सिनेमा में एक हेल्दी मिडिल क्लास हुआ करता था। क्वीन, कहानी, पीकू, हिंदी मीडियम, बधाई हो, बरेली की बर्फी, ना सबसे बड़ा स्टार जरूरी था, ना सबसे बड़े सेट, बस कहानी में दम होना चाहिए था। फिर ओटीटी आया और पहले तो लगा कि वाह यार, अब हर कहानी को जगह मिलेगी। लेकिन फिर ये ओटीटी प्लेटफॉर्म सिलेक्टिव हो गए और थिएटर्स का स्केल बढ़ता गया और बीच में एक अजीब सी खाली जगह बन गई। ना फिल्म इतनी बड़ी कि थिएटर में एक इवेंट बन सके, ना इतनी ज्यादा सेफ कि ओटीटी उसे उठा ले। और शायद इसलिए राइटर्स ने भी वो कहानियां लिखना कम कर दिया। लेकिन देखिए आवारापन 2 को, कोई दुनिया बचाने नहीं आ रहा, बस एक कहानी है, इमोशन है, कैरेक्टर्स हैं और ऑडियंस उसमें फिर से घर बना रही है। इसी काउंटडाउन में गाना नंबर 9 है धुरंधर का शरारत। और धुरंधर स्केल में बहुत बड़ी थी, लेकिन एट इट्स वेरी कोर उसमें एक कहानी थी और इसलिए ऑडियंस उसके साथ चली। बड़ी फिल्में प्रॉब्लम नहीं है, खाली फिल्में प्रॉब्लम है। शायद ऑडियंस ने मिडिल को रिजेक्ट नहीं किया, शायद हमने मिडिल बनाना ही छोड़ दिया। लेकिन अब नंबर 8 पर है कॉमेडी फिल्म, टिपिकल फिल्म, धमाल 4 का ये गाना कॉल्ड सारी। Number 9.

सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट 98.3 98.3 Mirchi, it's hot. Sureen ke saath, only on Mirchi, it's hot. Number 7.

0: अपनी इस फिल्म टॉक्सिक के साथ यश ने एक बात तो क्लियर कर दी है, बच्चों को फिल्म से दूर रखिएगा। लेकिन इसी यश के सामने अब एक ऐसा किरदार है जिसे बच्चे भी जानते हैं और बड़े भी जानते हैं, शायद पूरा देश अपनी अपनी नजर से जानता है, रावण। रामायण में राम को महान बनाने के लिए सिर्फ राम का अच्छा होना काफी नहीं था, सामने रावण भी ऐसा होना चाहिए था जिसे हराना एक वक्त पर नामुमकिन लगे, और यश ने इसी बात को समझा है। रजत शर्मा जी के शो आपकी अदालत में जब उनसे पूछा गया कि राम बनने के बजाय आप रावण क्यों बने, तो यश ने जवाब कुछ ऐसा दिया।
1: राम का भलाई दिखाने के लिए रावण का बुराई भी चाहिए सर, मुझसे अच्छा कोई दिखा नहीं सकता सर, अच्छाई में मैं भी करूंगा ना, वहाँ पे भी मुझे उतना ही कॉन्फिडेंस है, मुझसे अच्छा भी कोई नहीं दिखेगा सर। बट दिस फिल्म नीड्स अ सिचुएशन कि इसको कैसे मारे यार, तभी है ना रामायण। रामायण में लगे कि इसका यू कैन नॉट डाई, इसका उसके पास बून है, उसके पास सब है, उसके बाद प्रभु श्री राम उसको हराते।
0: यार कॉन्फिडेंस तो है लेकिन बात में लॉजिक भी है, क्योंकि रामायण की सबसे बड़ी कहानी शायद यही है, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो उसका अंत हमेशा होता है। अब सवाल यह है कि नितेश तिवारी की रामायण उस कहानी को हमारे लिए दोबारा कैसे जिंदा करती है, और म्यूजिक वो तो पूरी दुनिया बनाएगा भी और सजाएगा भी। ना अनफॉर्चुनेटली नंबर 6 पे जो गाना है चुनरी चुनरी, उसने एक अलग दुनिया बनाने की कोशिश तो की लेकिन इट डिडंट सक्सीड, और वैसे ही रामायण के गाने होपफुली हमें उस युग में ले जाएंगे। लेकिन अब काउंटडाउन में है आवारापन की दुनिया, नंबर 5 पर सुबोध शर्मा की आवाज में दिस इज वे जुनून।
2: नंबर 5।

ट्रेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 4.

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. जेलसी को पैशन बना दिया है, पोजेसिवनेस को प्यार, स्टॉकिंग को पर्सिस्टेंस और मैनिपुलेशन को रिलेशनशिप टेस्ट। कभी कभी चीटिंग को भी ट्रू लव कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। एंड दैट इज वॉट कॉकटेल 2 ट्राइड टू एक्सप्लोर व्हेन आई वॉच्ड इट ऑन OTT। यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए दैट ऑडियंस रोम कॉम्स चाहती है, टॉक्स कॉम्स नहीं। वी डोंट वॉन्ट टॉक्सिक लव, बट फ्रॉम टॉक्सिक लव आई वॉन्ट टू प्ले स्वीट इनोसेंट लव। बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया, इट्स माई स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ द वीक।

0: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
0: मिर्ची इट्स हॉट के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर 3।

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता है। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग इट वॉज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रॉमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक कि अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस। Someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, इस गाने के लिए भी उसने मेरे लिए लड़ाई की है, उसने बोला सबको अरे अमल ने इतना अच्छा गाया मुझे क्यों गवा रहे। तो मैंने बोला ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा इन लोग किसी की भी नहीं है, ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है दैट यू एटलीस्ट सी इफ यू लाइक द सॉन्ग, पूरा बन गया चेक इट आउट। सो इट वॉज जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बिफोर अभी दैट सॉन्ग केम दैट ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड रिविजिटेड द सॉन्ग 2-3 टाइम्स।
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर 1 बन गई है। दिस इज ये आवारापन, the new undisputed number 1 song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची डॉट 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिलो दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट मिर्ची, इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. Radio Mirchi, it's hot. Mirchi.

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप, बंदी का नाम है आरजे कनिका एंड इट्स टाइम टू सेट द पॉप काउंटडाउन ऑफ द वीक। हेलो एंड वेलकम, दिस इज द गाना इंडी टॉप 10 ओनली शो ऑन मिर्ची, जहां आपके लिए हफ्ते के टॉप 10 हॉटेस्ट पॉप गानों का काउंटडाउन लेकर आते हैं। इस हफ्ते के टॉप 10 गानों में एक नई एंट्री है, हमारा 90s 2000s का आइकॉनिक इंडी पॉप गाना है। वी आर गोइंग टू हैव सम स्पेशल शाउट आउट्स, आपके फेवरेट आर्टिस्ट से बातें, ऑल दिस एंड मोर, तो स्टे कनेक्टेड विद अस थ्रू आउट द काउंटडाउन। सीधा शुरुआत करती हूँ इस हफ्ते की विद गाना नंबर 10, ज़ारा खान स्केल्स का गाना, गाने का नाम है मूव बॉडी। पिछले हफ्ते से अपनी पोजिशन पर बरकरार मूव बॉडीज दिस वीक ऑन गाना नंबर 10। उसके बाद शान एंड दीदार कौर की आवाज में उदिपन शर्मा का म्यूजिक, श्लोक लाल के लिरिक्स, गाने का नाम है दिलदारा, दिस वीक ऑन गाना नंबर 9। ये दोनों गाने बैक टू बैक ओनली ऑन गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय। नंबर 10।

0: ऐसा क्या है ना शान की आवाज में कि उनके गाने को जब हम सुनते हैं, वी कैन इमेजिन हिम स्माइलिंग, कि ये गाना गाते हुए कैसे स्माइल कर रहे होंगे। मैं उनके बारे में बात करते हुए भी स्माइल करने लग जाती हूँ दीदार कौर एंड शान की आवाज में। दैट वॉज दिलदारा दिस वीक ऑन गाना नंबर 9।
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ On Mirchi.
0: शो का नाम है गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है आरजे कनेका। दिस इज द शो व्हिच इज ऑल अबाउट द हॉटेस्ट पॉप म्यूजिक ऑफ द वीक। एट आरजे कनेका ऑन इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो मुझे। कोई गाना सजेस्ट करना है, बातें बतानी हो, बिंदास आके हिट मी अप। आई ट्रूली बिलीव जो गाना हमें पसंद आने वाला होता है ना, वो हमारी डेस्टिनी में लिखा होता है। कब कैसे सुनना है, हम कौन सा अपॉइंटमेंट लेके जाते हैं कि आज मैं वो गाना जाके सुनूंगी और मुझे वो गाना अच्छा लगेगा, ऐसे नहीं होता है। वी जस्ट स्टंबल अपॉन दैट सॉन्ग। मे बी मैंने रेडियो पे चलाया हो, आपने सुन लिया हो, आप किसी कैफे में है और वहां वो गाना सुनाओ। इनफैक्ट मेरे साथ कितनी बार ऐसा होता है कि पहले वो जो रियलिटी शोज आते थे ना टीवी पे, कोई कंटेस्टेंट जो गाने गा रहे थे लाइव परफॉर्मेंस, उनके थ्रू आई यूज्ड टू लव दोस सॉन्ग्स। एंड देन रिसेंटली इट्स ऑल अबाउट ओटीटी शोज फॉर मी। आई रिमेम्बर मैंने नेटफ्लिक्स की एक ओटीटी सीरीज पे सबसे पहली बार प्रतीक कुहाड़ का तूने कहा मैंने सुन लिया सुना था, एंड आई लव द सॉन्ग। बंदिश बैंडिट्स के कितने सारे गाने हैं जो मैं बहुत पसंद है। देन लास्ट ईयर मिस मैश का, इट्स इनक्रेडिबल दैट हमें अब ओरिजिनल म्यूजिक मिल रहा है फ्रॉम ओटीटी शोज। इश्क है फ्रॉम मिस मैश इज वन फॉर द हिस्ट्री बुक्स। ये गाने इतने बड़े हुए, लोगों को इतने पसंद आए कि इनकी अपनी अलग पहचान बन गई। काउंटडाउन का जो अगले वाला गाना है ना, इट्स ऑल्सो फ्रॉम अ ओटीटी शो एंड इट्स अ नई नवेली एंट्री ऑन अ काउंटडाउन। मुसाफिर कैफे का गाना है। आई नो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है कि क्यूट सिंपल सी लव स्टोरी है। मैं अभी तक नहीं देख पाई हूँ, अगले वीकेंड का प्लान है मैं देखूंगी। दो लोग पहाड़ों में छोटा सा कैफे, सबका यही ड्रीम है। एंड जो गाना डेब्यू कर रहा है इस हफ्ते, उसका नाम है काफी है ना। ये गाना उस सिंपल सी लव स्टोरी की सिंपलिसिटी को डिफाइन कर देता है। दैट अल्टीमेटली जब हम किसी के साथ प्यार में होते हैं, या हाउ डू वी वांट टू फील लव्ड, कि किसी के लिए हमारी प्रेजेंस बस इनफ है, दैट काफी है ना। अपनी रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। प्रियांश श्रीवास्तव एंड जुनिंदा गांधी की आवाज में है गर्वित प्रियांश, शाउट आउट टू बोथ ऑफ देम, उनकी कॉम्पोजिशन। गाने का नाम है काफी है ना, अ नई नवेली एंट्री ऑन द काउंटडाउन फ्रॉम मुसाफिर कैफे। इट डेब्यू सीधा ऑन गाना नंबर 8। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10, बंदी का नाम है कनिका। एंजॉय। नंबर 8।

0: इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

लफ्ज़ कुछ ऐसे हैं, गवाया इस कदर के, गौर फरमाइएगा, गवाया इस कदर के पाने को अब कुछ बचाना है। परिंदा कैद पिंजरे में, परिंदा कैद पिंजरे में, उसे डर आसमां का है। गवाया

0: जब फरक ने कहा हमारा ठोकरों से खास नाता है, the entire generation felt it together. फरक की आवाज होने की कॉम्पोजिशन, दिस सॉन्ग तारे इज माई फेवरेट फ्रॉम द काउंटडाउन. पिछले हफ्ते से एक पोजीशन ऊपर जंप करके दिस वीक ऑन गाना नंबर 6. उससे पहले हमने सुना संजू राठौड़ का बैंगल्स, दिस वीक ऑन गाना नंबर 7.
1: गाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची.
0: मिर्ची पर दिस इज द गाना इंडी टॉप 10. बंदी का नाम है आरजे कनिका. कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम पर जाओ, फॉलो करो, हैंडल इज @RJKanika. फॉलो करना बिल्कुल फ्री है. गाने सजेस्ट करती हूँ, बातें बताती हूँ, कोई आपको बातें शेयर करनी हो बिंदास आके हिट मी अप. इट्स टाइम टू पुट अ स्पेशल स्पॉटलाइट ऑन अ सॉन्ग जो अभी टॉप 10 गानों में एंट्री नहीं मारा है, पर जिस तरह से जनता इस गाने को प्यार दे रही है, डेफिनेटली इट विल मेक इट द काउंटडाउन. आज के स्पॉटलाइट का गाना इज बाय वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग आर्टिस्ट ऑफ दिस काउंटडाउन ऑफ इंडस्ट्री टुडे. आई एम टॉकिंग अबाउट बंजारे. उनका नया नवेला गाना आया है बरसात. द सॉन्ग कैप्चर्स दैट फीलिंग कि जब आपका ब्रेकअप हो गया या किसी ने आपको छोड़ दिया है, दैट हर्ट्स ऑब्वियसली, बट पता है उससे भी ज्यादा बुरा क्या लगता है, व्हेन वी रियलाइज कि कोई हमसे आगे बढ़ चुका है, वो मूव ऑन कर चुका है. ये गाना एग्जैक्टली वहीं पर है. बट बिफोर वी टॉक अबाउट द सॉन्ग and we listen to the song, let's talk about Banjare, jinka gana Baron mera aur aapka dono ka favorite hai. ये पूरा गाना आगे काउंटडाउन में फीचर होने वाला है, बट लेट्स टॉक अबाउट दीज आर्टिस्ट. इट्स अ ब्रदर डुओ कॉल्ड सुमित एंड अनुज जो कुरुक्षेत्र जिले से आते हैं, जिन्होंने हरियाणवी म्यूजिक के टूवर्ड सबकी सोच बदल दी. रिच सॉन्ग राइटिंग, वेरी फोक स्टोरी टेलिंग का उनका अंदाज है एंड गानों को इतना होलिस्टिक बनाते हैं दैट यू आर ड्रॉन टूवर्ड्स द इमोशन जो वो एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं. एंड सेम वही बात बरसात. इट गोज थ्रू स्टेजेस ऑफ ग्रीफ जो एक बंदी फील कर रही है, जिसका गम खालीपन इस गाने में आपको जोर जोर से सुनाई देगा. द सॉन्ग गोज थ्रू 4 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. पहले तो वो मानती ही नहीं है, दैट इज डिनायल. फिर वो टूट जाती है, दैट्स पेन. फिर उसी गाने के दौरान वो ये बात समझती है कि जो छोड़ के चला गया वो मुड़के नहीं देखने वाला, दैट इज एक्सेप्टेंस. एंड देन उसके बाद शी डिस्कवर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीलिंग, जहां वो खुद के सुकून को प्रायोरिटाइज करती है. वो ये बात चुनती है कि अब इस फीलिंग को पकड़ के तो नहीं बैठ सकते, दैट इज लेटिंग गो. एंड वी ऑल हैव फेल्ट दीज इमोशंस कभी ना कभी किसी के टूवर्ड्स किसी स्टेज पर. तो अपने रेडियो सेट्स की वॉल्यूम बढ़ा लीजिए. बंजारे आर बैक एट इट अगेन. उनका नया नवेला गाना कॉल्ड बरसात, रीचिंग फॉर अ हार्ट, इट्स प्लेइंग right next for you on our special Gaana Spotlight. Bandi ka naam hai RJ Kanika. Enjoy.

0: कितने मेरी।
1: गॉड डैम, आप हरियाणवी नहीं समझते, मैं नहीं समझती हूँ, बट वो फीलिंग ऑफ लेटिंग गो वो पूरी अच्छी तरीके से इस गाने में समझ में आती है। गाने का नाम है बरसात बाय द वन एंड ओनली बंजारे ऑन आर स्पेशल गाना स्पॉटलाइट दिस वीक। बैक टू द काउंटडाउन, अगले वाले गाने की बारी। इट्स अ सॉन्ग फ्रॉम मुसाफिर कैफे। पिछले हफ्ते से अपनी पोजीशन पर बरकरार रेखा भारद्वाज जी एंड राघव कौशिक की आवाज में, राघव कौशिक का ही म्यूजिक। गाने का नाम है दरमिया, दिस वीक ऑन गाना नंबर 5। यू आर लिसनिंग टू गाना इंडी टॉप 10। बंदी का नाम है कनिका, एंजॉय।
2: Number

0: रोजाना इंडी टॉप 10 कनिका के साथ ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट। के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट नंबर

16 साल से रिलेशनशिप में हो, साथ रहते हो, खुश हो, शादी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। एंड फिर बॉलीवुड कहता है एक काम करते हैं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को अपने ही बॉयफ्रेंड को पटाने के लिए कन्विंस करते हैं, लॉयल्टी टेस्ट करवाते हैं। वेलकम टू कॉकटेल 2 विथ रश्मिका मंदाना एज दिया, कृति सैनन एज एली एंड शाहिद कपूर एज कुणाल। एंड ऑनेस्टली दिया, 2026 है, थेरेपी नाम की भी एक चीज होती है। लेकिन कॉकटेल 2 का प्रॉब्लम सिर्फ इतना नहीं है कि इसकी असली लव स्टोरी काफी कॉम्प्लिकेटेड है। प्रॉब्लम यह है कि बॉलीवुड को कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक के बीच का फर्क आता ही नहीं है। They forgotten about it. Jealousy को पैशन बना दिया है, possessiveness को प्यार, stalking को persistence और manipulation को relationship test. कभी कभी cheating को भी true love कह दिया जाता है। और हम देखते रहते हैं क्योंकि स्क्रीन पर दो खूबसूरत लोग अगर खड़े हो, बैकग्राउंड में एक बड़ा सा रोमांटिक गाना बज रहा हो, तो हम हर रेड फ्लैग को गुलाबी चश्मों से देखते हैं। शायद रोमांस का मतलब ये नहीं है कि सामने वाला आपको कंफ्यूज करता रहे, रोमांस शायद वही है जहां आपको टेस्ट देने की जरूरत ही ना पड़े। और अगर 16 साल बाद भी अपने पार्टनर की लॉयल्टी चेक करने के लिए किसी तीसरे इंसान की जरूरत पड़ रही है, तो प्रॉब्लम लव ट्रायंगल में नहीं है, प्रॉब्लम आप में है और आपके रिलेशनशिप में। And that is what Cocktail 2 tried to explore when I watched it on OTT. यार बॉलीवुड को भी शायद अब ये समझ लेना चाहिए that audience rom-coms चाहती है, toxcoms नहीं। We don't want toxic love. But from toxic love, I want to play sweet innocent love. बर्फी नाम की फिल्म, उसका एक गाना निखिल पॉल जॉर्ज की आवाज में, आशिया। It's my special request of the week.

0: कुछ आवाजें चार्ट्स पर नहीं आती हैं, चार्ट्स को अपना घर बना लेती हैं। एंड गहरा हुआ ने इतने हफ्तों से कुछ ऐसा ही किया, लेकिन आज बहुत वक्त बाद उसकी जगह कोई और आ गया है। गाना बेशक अलग है लेकिन आवाज वही है, अरिजीत सिंह। लेकिन इस बार वो एक नए गाने के साथ नहीं, एक पुरानी याद के साथ लौटे हैं। आवारापन, एक फिल्म जो 2007 में आई थी, जिसके गाने हमने MP3 प्लेयर्स में भरे, आईपॉड्स में संभाले, फोन बदलते रहे, लेकिन गाने नहीं बदले। तो फिर आओ, तेरा मेरा रिश्ता, और इतने सालों बाद सवाल यही था, आवारापन का दर्द दोबारा कैसे लिखोगे यार? अमाल मलिक के सामने मुश्किल गाना बनाना नहीं था, मुश्किल था एक याद बनाना, और उस याद के लिए अमाल को एक आवाज चाहिए थी।
1: आप इनिशियली अरिजीत के फर्स्ट 3-4-5 इयर्स में आप हो सकता था कि आप कोई भी गाना दे दो अरिजीत के नाम से चल जाए, अब वैसा नहीं होता है और किसी के साथ भी नहीं होता है। गेट द बिगेस्ट सिंगर ऑफ द कंट्री ऑल्सो, अरिजीत सिंह ले लो, आप सोनू निगम ले लो, अगर गाने में बात नहीं है तो आप इतना ही विंडो तक उसको संभाल के बचा के प्रमोट करके यू कैन सेव इट। बट इफ इट इज गोइंग टू बी हर्ड एंड लव्ड एंड ऑल, तो सिंगर का भी हार्ट होना चाहिए, कंपोजर का भी हार्ट होना चाहिए, लिरिक्स राइटर सबका एक साथ में वो एनर्जी से गाना बनता। सो व्हेन ही हर्ड द सॉन्ग इट वॉज नथिंग कि उसने कोई पहले प्रोमिस किया या हम लोग की कोई डील थी, यू नो पीपल ऑलवेज थिंक कि अच्छा कोई पुराना रिकॉर्डेड गाना अब रिलीज हो गया। सो सिंस अ ईयर इट इज बीन इन माई वॉइस। Someone comes once in an era and becomes an Arijit Singh. Not everyone has the skill set also. Not everyone has the blessing of God also. And not everyone has the heart also like him to step away in the prime. Yani he himself also used to tell, इस गाने के लिए भी उसने मेरे लिए लड़ाई की है, उसने बोला सबको अरे अमल ने इतना अच्छा गाया मुझे क्यों गवा रहे। तो मैंने बोला ऐसा मुझे चाहिए, ऐसा इन लोग किसी की भी नहीं है, ऐसा मेरी रिक्वायरमेंट है दैट यू एटलीस्ट सी इफ यू लाइक द सॉन्ग, पूरा बन गया चेक इट आउट। सो इट वॉज जस्ट अबाउट 3-4 मंथ्स बिफोर अभी दैट सॉन्ग केम दैट ही स्टार्टेड रिकॉर्डिंग एंड रिविजिटेड द सॉन्ग 2-3 टाइम्स।
0: और आज गहरा हुआ को पीछे छोड़कर वही आवाज फिर से नंबर 1 बन गई है। दिस इज ये आवारापन, the new undisputed number one song on the Mirchi Top 20.

0: ये आवारापन मिर्ची टॉप 20 को एक नई जगह पहुंचा दिया इसने, और शायद इसलिए गाने इतने कमाल के होते हैं। कुछ सिर्फ चार्ट्स पर ऊपर जाते हैं और कुछ सीधा दिल और दिमाग में अब्सॉर्ब हो जाते हैं। वेल दिस एपिसोड इज डन, लेकिन मैं वापस आऊंगा। सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम वी मीट, सुरेन ओवर एंड आउट।
1: सुरेन के साथ ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: Radio Mirchi, it's hot.
3: Mirchi, it's hot.

Mitchie. It's hot.

0: Mirchi, it's hot.
1: Saathi re, thoda thehar ja, abhi raas.

Peace.

0: Radio Mirchi, it's hot.
1: Mirchi, it's hot.

0: मिर्ची, इट्स हॉट।
1: धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन धन

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी मेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

Mirchi, it's hot.

गुड मॉर्निंग, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में. ऑफ कोर्स दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स. अब टाइम है वेदर अपडेट का. सो राइट नाउ इट्स अराउंड 62 डिग्रीज फारेनहाइट. इट्स सनी लेकिन फील हो रहा है 64 डिग्रीज के आसपास, मतलब कि एक्चुअल टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा. देखो सुबह से तो पार्टली क्लाउडी स्काइज चल रहे हैं, लेकिन टुडे वी आर लुकिंग एट अ टेम्परेचर रेंज ऑफ 60-80 डिग्रीज फारेनहाइट एंड द फील्स लाइक रेंज विल बी फ्रॉम 61-79 डिग्रीज फारेनहाइट. And the good news is for your commute, next 24 hours mein precipitation is 0 millimeters. Kal humne 2 millimeters ki barsaat dekhi, lekin aaj ka scene jo hai kafi khula khula hai. Aaj ka high jayega 80 degrees Fahrenheit tak, pretty similar to yesterday's 81 degrees Fahrenheit. Now before you head out, let me remind you, layer ke player bankar bahar nikalna, carry your water bottle, have plenty of water and wear your sun protection SPF 50+++. एंड साथ साथ में मिर्ची करेगा बंधन पूरा कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करो टू विन फैबुलस गिफ्ट हैम्पर्स कैटसी नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. सिंपली व्हाट्सएप करो RAKHI राखी टू 9033 मिर्ची. दैट्स 9033647244 अलोंग विद योर फुल नेम एंड वेट फॉर माय कॉल इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. ऑनलाइन विजिट करो wiranijewelers.com पर. और तुम मुझे डीएम करके भी एंटर कर सकते हो. ड्रॉप इन राखी RAKHI विथ योर फुल नेम एंड फोन नंबर. मिर्ची प्रेस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम, दैट इज MIRCHIPRIS एंड जस्ट वेट फॉर माई कॉल. एंड राइट नाउ आने वाले हैं मिर्ची दार बैंगर्स फॉर यू. स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट.

Hey, my दोस्त, मैं हूँ तुम्हारी होस्ट, नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब चलो चलते हैं टाइम ट्रैवलिंग पर। 79 CE में माउंट वेसुवियस इरप्टेड एंड बेरीड पॉम्पे एंड हर्क्यूलानियम एंड 410 में विसिगोथ्स एंटर्ड एंड सैक्ड रोम। और हिस्टोरियंस का कहना है दिस वॉज अ मेजर टर्निंग पॉइंट इन द फॉल ऑफ द वेस्टर्न रोमन एम्पायर। 1572 में फ्रांस में सेंट बार्थोलोम्यूज डे मैसेकर बिगन व्हेन थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंच प्रोटेस्टेंट्स वर किल्ड। 1814 में ब्रिटिश ट्रूप्स कैप्चर्ड वॉशिंगटन डीसी ड्यूरिंग द वॉर ऑफ 1812 एंड सेट फायर टू द व्हाइट हाउस एंड द यूएस कैपिटल। फिर 1821 में मेक्सिको गेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम स्पेन थ्रू द ट्रीटी ऑफ कार्डोबा। एंड जंपिंग टू 1991 यूक्रेन डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन। एंड फाइनली 2006 में प्लूटो गॉट डिमोटेड फ्रॉम प्लैनेट टू ड्वार्फ प्लैनेट। पुअर प्लूटो। वांट टू विन सम अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स कर्टसी नानक फूड्स ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ? देन व्हाट्सएप करो राखी RAKHI टू 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, अलॉन्ग विद योर फुल नेम। एंड यू कुड रजिस्टर दिस वे टू पार्टिसिपेट इन द कॉन्टेस्ट मिर्ची करेगा बंधन पूरा इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड विद फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com. You can also DM me Instagram par Mirchi Pris is my handle name, that is MIRCHIPRIS. Lekin Instagram par mujhe message karte time Rakhi ke saath saath apna phone number aur pura naam likhkar bhejna so that I can call you back. And right now sunte raho Mirchi, aane wale hain Mirchi dar bangers. Stay tuned and stay hot.

गुड मॉर्निंग माय देसी पीपल, माय देसी दुनिया. मैं हूँ प्रसला तुम्हारे साथ में. मिर्ची मॉर्निंग्स हैज ऑफिशियली बिगन. अभी फिलहाल तुम ड्राइव कर रहे हो, पैकिंग योर लंच, प्रिटेंडिंग टू वर्क व्हाइल एक्चुअली सिटिंग इन योर पजामास, या फिर व्हाट्सएप पर मैसेजेस के रिप्लाई कर रहे हो, या फिर स्टैंडिंग इन द किचन वंडरिंग आज परौंठे खाऊं या बेगल. You are exactly where you need to be with me on Mirchi Mornings. अगले कुछ घंटों के लिए हम लाइफ को बनाने वाले हैं मिर्चीदार, बिकॉज मॉर्निंग्स आर बेसिकली लाइक इंडियन शादियां. काफी ज्यादा क्योटिक होती है, काफी ज्यादा लाउड होती है, लेकिन फुल ऑन एंटरटेनिंग भी होती है. सो बकल अप, बिकॉज वीव गॉट बॉलीवुड म्यूजिक, मस्ती, मिर्ची, ढेर सारी गॉसिप्स एंड ढेर सारी अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड ओनली फॉर यू विथ मी प्रिसला. और एक कॉन्टेस्ट भी चल रहा है मिर्ची पर, जिसके बारे में थोड़ी देर में बात करेंगे. अभी फिलहाल मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर भी नोट करो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 3647244. Stay tuned and stay hot.

there, this is Priscilla with you, सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो अराउंड द वर्ल्ड की खबरें। सबसे पहले बलोच लीडर मीर यार बलोच हैज अनाउंस्ड प्लान्स टू रिप्लेस पाकिस्तान एसोसिएटेड नेम्स एंड सिंबल्स ऑन रोड्स एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन विद नेम्स कनेक्टेड टू बलोच हिस्ट्री कल्चर एंड ज्योग्राफी। दिस फॉलोज अ डिक्लेरेशन ऑफ एन इंडिपेंडेंट बलोचिस्तान। नंबर टू पर इंडिया हैज न्यू ब्यूटी क्वीन 19-year-old कजिया लिज मेजो फ्रॉम केरला हैज बीन क्राउन्ड मिस यूनिवर्स इंडिया 2026। शी विल रिप्रेजेंट इंडिया एट द मिस यूनिवर्स पेजेंट इन Puerto Rico this November. And last but not the least, gold prices are shining brighter than everything else in the world right now. Gold has crossed $4,660 per ounce, roughly 4.46 lakh rupees per 31 grams, while silver climbed to about $69.65 an ounce, around 6,665 rupees. Gold has now posted its third straight weekly gain, while crude oil slipped by more than a dollar. And that's it for Mirchi Hour का 3। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में। फॉलो करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: बस तुम रहते हो।
1: नाइन्टी एट पॉइंट थ्री मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रसला तुम्हारे साथ में। एंड टुडे स्टोरी इज गिविंग अस टेक्नोलॉजी मीट्स देसी संस्कार टाइप का फील। इंडिया के मध्य प्रदेश के उज्जैन में ह्यूमनॉइड रोबोट शोड अप फॉर अ सैंडविच शॉप इनॉग्रेशन एंड अपेरेंटली सिर्फ रिबन कटिंग से काम नहीं चलता। ये जो रोबोट है इट अराइव्ड विद बॉडीगार्ड्स, गॉट अ ग्रैंड वेलकम एंड वॉज गिवन एन आरती रैप्ड इन अ ट्रेडिशनल अंग वस्त्र and then danced for the guests also. I mean, imagine ordering a sandwich from there and the waiter says, sir, aapka jo grilled sandwich hai, it's ready. But ab entertainment ke liye robot jo hai, wo aapke samne dance karne wala hai. The video has gone viral, not without plenty of reactions online, including one person jokingly saying, China, you cannot compete with this. And honestly, hamare desi innovation ka level hi alag hai. Robot ho ya rishtedar ho, hum ek hi tarah se sabka welcome karte hai. And now let's talk about some sparkle. Tanishq पर चल रहा है फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुम्हें 25% ऑफ मिल रहा है डायमंड की वैल्यू पर एंड मेकिंग चार्जेस पर। इससे बढ़िया ऑफर तुम्हें कहीं नहीं मिलने वाला है। साथ में अगर तुम्हारे पास कोई पुराना गोल्ड रखा हुआ कहीं लॉकर पर कहीं छुपा कर, जिसे तुम अब यूज नहीं करते हो और एक्सचेंज कराना चाहते हो, 18 कैरेट से अबव भी है ये, तो लेकर पहुंचो उसे तनिष्क पर, जहां पर तुम्हें 0 डिडक्शन पर ये गोल्ड एक्सचेंज करने को मिल जाएगा। ऑफकोर्स टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाइड है। सो अभी अगर शॉपिंग करना चाहते हो तुम गोल्ड एंड डायमंड की, तो तनिष्क इज द प्लेस टू बी। और अगर मिर्चीदार बैंगर्स सुनने हैं तो तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। मैं हूं प्रिसला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स। मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर भी नोट करो, 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

Hey there, good morning. मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स और ऑल द बर्थडे बेबीज. आज तुम्हारा दिन जो है वो एक्स्ट्रा स्पेशल बनाने का इंतजाम मैं कर चुकी हूँ. सबसे पहले हैप्पी बर्थडे टू यू विद अ जादू की झप्पी एंड अ पप्पी. एंड इफ यू आर सेलिब्रेटिंग टुडे, तुम्हारे साथ साथ कौन सेलिब्रेट करे? सबसे पहले रूपर्ट ग्रिंट, AKA Ron Weasley from Harry Potter. And also celebrating is comedy superstar Dave Chappelle, actress Marley Matlin, comedian and author Stephen Fry, Police Academy star Steve Guttenberg, and Brazilian author Paulo Coelho. And from history, today marks the birth anniversary of Sivaram Rajguru, one of India's prominent freedom fighters. Also born today, Palestinian leader and Nobel Peace Prize laureate Yasser Arafat, and the legendary Argentine राइटर होर्हे लुइस बोर्हेस. सो बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल हो, आज केक थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए. क्लियरली द यूनिवर्स हैज एक्सलेंट कास्टिंग. एंड व्हाइल वी आर सेलिब्रेटिंग बॉन्ड्स, डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन मिर्ची करेगा बंधन पूरा. ये कॉन्टेस्ट है विच इज ब्रॉट टू यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. सिंपली व्हाट्सएप करो राखी RAKHI टू 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244, अलॉन्ग विद योर फुल नेम एंड देन वेट फॉर माई कॉल इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन Tree Road with festive special offers on 22 carat gold and diamond jewelry. Visit karo viranijewelers.com. Aur tum jaldi jaldi mein mujhe DM bhi kar sakte ho. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. Yahan par bhi type karna hai Rakhi. Yahan par apna naam aur phone number dono drop karna hai taki main tumhe call back kar sako. And abhi ke liye happy birthday to everyone celebrating. Rakhi ki taiyariyan shuru kar do and Mirchi dar bangers tumhare liye play karte hain. Stay tuned and stay hot.

0: इन एयर मिर्ची मॉर्निंग्स पर टाइम है खनखनाहट का यानी कि गोल्ड रेट अपडेट जानने का। मेरा नाम है प्रिसला।
1: RajJewels.com wishes everyone happy and healthy morning. Gold trading at $4,660. $4,660 पर ट्राय के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइसेस ऑलमोस्ट $60 अपवर्ड ट्रेंड पर हैं। गोल्ड एग्रेसिव ट्रेंड लेता दिख रहा है। इससे पहले गोल्ड के प्राइसेस और ऊपर जाएं, राज ज्वेल्स की स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसमें आप आज ज्वेलरी घर ले जा सकते हैं 0% इंटरेस्ट पर और 0 डाउन पेमेंट के साथ। अप्रूव होने पे 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम रिंग में सेट। आइए हमारी फाइनेंसिंग ऑप्शन अवेल करें जिसमें आप आज कोई पैसा बिना दिए 0% इंटरेस्ट के साथ 9 इंस्टॉलमेंट्स में गोल्ड का प्राइस आज लॉक करके ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में राज ज्वेल्स को पैसे दें और आपका कार्ड अगेन आफ्टर रीपेमेंट ऑफ द एंटायर अमाउंट इज रीयूजेबल। जी हाँ, आप दोबारा यूज कर सकते हैं, आपकी क्रेडिट लिमिट ओपन हो जाती है नई परचेज के लिए। सो आइए RajJewels.com के साथ खूबसूरत ज्वेलरी घर लेके जाएं और गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू।
0: एंड यू हैव इट मिर्ची मॉर्निंग्स पर एक्सक्लूसिव गोल्ड रेट अपडेट सुना तुमने प्रिसला के साथ में। अभी मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. सबसे पहले, मोर देन 150 पाकिस्तानी सिंधी ब्राइड्स हैव रिपोर्टेडली अराइव्ड इन इंडिया टू मैरी देयर इंडियन फियोंसेज आफ्टर प्रीवियसली बीइंग अनेबल टू ट्रैवल अमिड वीजा रिस्ट्रिक्शंस एंड द क्लोजर ऑफ द वाघा बॉर्डर. रिपोर्ट से सम ट्रैवल्ड थ्रू प्लेसेज इंक्लूडिंग मस्कट, दुबई एंड श्रीलंका. अ कम्युनिटी लीडर सेज अराउंड 300 मोर वुमेन हैव सॉट इंडियन वीजाज. नंबर टू पर, इंडिया में रेन्स हैव कॉज्ड वाटर लॉगिंग एंड ट्रैफिक डिस्ट्रप्शंस अक्रॉस पार्ट्स ऑफ द कैपिटल एंड एनसीआर इंक्लूडिंग सदर बाजार, सीआर पार्क, बुरारी एंड एरियाज अराउंड न्यू अशोक नगर. गुरुग्राम हैज ऑल्सो सीन वाटर लॉगिंग इंक्लूडिंग नियर सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन. And lastly, fans are buzzing about Akshay Khanna as Shukracharya in upcoming Mahakali. The teaser has sparked praise for his transformation and voice modulation, with many fans calling the casting a perfect fit. The film is directed by Prashant Varma, with Pooja Hegde as Mahakali and Rohit Saraf also starring. And that's it for Mirchi Hour ka 3. For this hour, main hoon Prisala tumhare saath mein. Mujhse connect karo Insta aur X par. Mera handle hai Mirchi Pris. And WhatsApp par number hai 9033 Mirchi. That's 9033 64 7244. Stay tuned and stay hot.

0: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में। वेलकम टू राशि जोन का पार्ट वन। यहाँ पर एरीज से वर्गो तक की साइंस के बारे में हम बात करने वाले हैं।
1: राशि जोन
0: एरीज यानी मेष राशि, रूटीन चेंज करो, एक्टिव रहो, लेकिन डाइट और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखो। एनर्जी फुल ऑन है, लेकिन बॉडी को मैं सब कर लूंगा मोड से ओवर क्लॉक मत किया करो। लकी कलर फॉर यू इज रेड, लकी नंबर इज 14। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, आज डिलेज आ सकते हैं, सो रशिंग इज नॉट द वाइब, स्पेशली मनी मैटर्स में। पॉज करो, थिंक करो, देन स्वाइप करो। लकी कलर इज ऑलिव, लकी नंबर इज 6। जेमिनी यानी मिथुन राशि, इमोशनली थोड़ा सा अनश्योर फील कर रहे हो तो क्लोज फ्रेंड्स पर लीन ऑन एंड स्लीप प्लीज। नेटफ्लिक्स को तुम्हारी जरूरत नहीं है एट 2 AM। लकी कलर इज लैवेंडर, लकी नंबर इज 21। कैंसर यानी कर्क राशि, कम्युनिकेशन में जो बात पेंडिंग है उसको जेंटली एड्रेस करो। छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग को प्रेशर कुकर बनने से पहले वेंट कर दो। लकी कलर इज पर्ल व्हाइट, लकी नंबर इज 9। लियो यानी कि सिंह राशि, आज हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पर लेने की जरूरत नहीं है, थोड़ा रिलैक्स करो। तुम एम्प्लॉय हो, एवेंजर्स के लीडर नहीं। लकी कलर इज एम्बर, लकी नंबर इज 18। वर्गो यानी कन्या राशि, करियर वाइज ब्राइट डे है। प्रेज और अप्रिसिएशन फ्रॉम कॉलीग्स और सीनियर्स कुड कम योर वे, सो यस, आज कॉम्प्लीमेंट्स को बस फॉर्मेलिटी होगी बोलकर डिसमिस मत करना। लकी कलर इज टील, लकी नंबर इज 4। एंड दैट वाज योर जोन 1, बोले तो राशि जोन 1। फॉलो करो मुझे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। लेकर आती हूं राशि जोन पार्ट 2 इन जस्ट अ व्हाइल, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।
2: मिर्ची, इट्स हॉट।

0: वेलकम बैक टू एमर्जी मॉर्निंग्स. मेरा नाम है प्रिसिला और हम बातें कर रहे हैं बची हुई छह राशियों की, यानी कि लीब्रा से लेकर पाइसीस तक की.
1: मिर्ची राशि जोन.
0: लीब्रा यानी तुला राशि, वर्क प्रेशर थोड़ा सा हाई हो सकता है. हैवी डिमांड्स को पर्सनल लाइफ से बैलेंस करना होगा. बेसिकली बॉस को भी रिप्लाई चाहिए और फैमिली को भी. डीप ब्रेथ लो. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 27. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, हार्डवर्क और स्टेडी फोकस से माइनर फाइनेंशियल या हेल्थ हर्डल्स हैंडल हो जाएंगे. शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़ना. स्लो एंड स्टेडी इज योर जुगाड़ टुडे. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 11. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वार्म हैप्पी इंटरेक्शंस अहेड. बस खाने पीने में थोड़ा सा कंट्रोल करो, बिकॉज वन मोर समोसा इज नॉट पर्सनैलिटी ट्रेट. लकी कलर इज मस्टर्ड. लकी नंबर इज 23. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, वर्कलोड या एक्सपेंसिस थोड़े बढ़ सकते हैं. पेशेंस रखो, सेटबैक्स टेम्पररी है. क्रेडिट कार्ड को भी थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, उसे रेस्ट दे दो. लकी कलर इज फॉरेस्ट ग्रीन. लकी नंबर इज 8. Aquarius यानी कुंभ राशि, हेल्थ स्टेडी है. सो टुडे इज अ ग्रेट विंडो टू प्लान समथिंग फन एंड फिजिकल. वर्कआउट, डांस, योगा, वट एवर गेट्स यू मूविंग. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 16. Pisces यानी कि मीन राशि, कंफर्टिंग एक्टिविटीज पे फोकस करो. समथिंग दैट बूस्ट योर कॉन्फिडेंस एंड गिव्स यू पीस ऑफ माइंड. आज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा पीस ऑफ माइंड का सब्सक्रिप्शन रिन्यू करो. लकी कलर इज रोज. लकी नंबर इज 32. एंड दैट्स योर राशि जोन पार्ट 2. फॉलो मी. मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

And just like that, Mirchi Mornings is coming to an end. Priscilla here, and honestly, यार, अगर तुमने मेरे साथ साथ कॉफी पी है, कम्यूट किया है, काम शुरू किया है या सीक्रेटली बॉस से बच के सुना है, थैंक्स फॉर हैंगिंग आउट विथ मी. आज हमने बहुत सारा अमेजिंग म्यूजिक सुना, मस्ती की, न्यूज पता की, एंड थोड़ा सा देसी मसाला भी शेयर किया. आई होप मैंने तुम्हारी मॉर्निंग्स को थोड़ा सा ब्राइट किया होगा. लेकिन बिफोर आई लेट यू गो, राखी का प्यार प्राइजेस के साथ, इसके बारे में बात करना तो बनता है यार, क्योंकि नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा. एक कॉन्टेस्ट चल रहा है ओनली ऑन मिर्ची, जहां पर तुम्हें अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स मिल सकते हैं. ऑफ कोर्स कर्टसी नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ. दिस इज इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर. विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com पर. एंड इसमें पार्टिसिपेट करना और ज्यादा इजी है. व्हाट्सएप करना है राखी RAKHI 9033 मिर्ची पर. दैट्स 9033647244, along with your full name to register. And yes, you can also DM me. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. लेकिन यहाँ पर DM करते टाइम अपना फोन नंबर और पूरा नाम लिखना राखी के साथ साथ. So इस साल राखी सिर्फ अपनी siblings को भेजो मत, यहाँ मिर्ची पर भी भेजो, ताकि तुम कुछ amazing prizes जीत सको अपने siblings के लिए. और अभी के लिए टाटा बाय बाय फ्रॉम माई साइड. मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर. तब तक के लिए यू स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Michi, it's hot.
1: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाए

0: मम्मा ने इतनी टिप्पणियां दी है ना मुझे जिंदगी में, उन बातों को मैंने अक्सर नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन आज मैं ऑटो वाले भैया की ये जो बात थी ना, उसको नजरअंदाज नहीं कर पाई।
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, and now you tune in with me on मिर्ची। और ये ऑटो वाले भैया जो होते हैं ना, इन लोगों के पास ना बड़े पिटारे होते हैं कहानियों के। और बातों ही बातों में ना एक ऑटो वाले भैया से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने न जाने डर के बारे में बात करनी शुरू कर दी। आई मीन आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि ऐसा क्यों हुआ कि वो डर के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने डर के बारे में बात करते करते ये बात कही कि मैडम जब छोटे थे ना तो इतना डर नहीं लगा करते था, लेकिन बड़े होते होते ना डर जो है वो उम्र के साथ साथ बढ़ता गया। And I was like, हाँ यार, ये कितनी सही बात कह रहे हैं। Actually, जब हम छोटे थे तो हमें किसी चीज का डर नहीं लगता था। तब हमें लगता था कि हम दुनिया मुट्ठी में कर लेंगे। तब हमें ना अनजानों से डर लगता था, ना इस बात से डर लगता था कि कोई हमें किस नजर से देख रहा है, ना इस बात से डर लगता था कि पॉकेट मनी खत्म हो गई है, ना ही हमें ऊंचाई से डर लगता था, ना ही हमें गहराई से डर लगता था। हाँ, डर लगता था तो सिर्फ अंधेरों से, मम्मा की घूरती हुई निगाहों से, टीचर की डांट से और मेरी खुद की आर्ट से। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए ना, ये डर जो है ये कितना बढ़ता गया ना, अब हम न जाने कितनी सारी चीजों को लेकर सिर्फ और सिर्फ डरते रहते कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना वरना वो हो जाएगा, वो नहीं करना वरना ये हो जाएगा। फॉर इंस्टेंस, महीने की शुरुआत होती है और हमें EMI से डर लगने लग जाता है कि ओ नो, अभी तो सैलरी आई है और अब चली जाएगी, कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा इस महीने हमारे पास। एडवेंचर करने से भी डर लगता है मालिक, अब ऐसा लगता है कि यार गए और गिर गए तो क्या होगा, पहले ये सब बातें कौन सोचा करता था यार, हम तो सिर्फ कर जाया करते थे, सोच कर कुछ नहीं किया करते थे। मैंने कहा ना, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे डर भी बढ़ता जाता है। लेकिन एक मजेदारी वाली बात बताऊं, दो ही उम्र के ऐसे पड़ाव होते हैं जहां पर डर हमें कम लगता है या ना लगता है, या तो बचपन या फिर बुढ़ापा। क्योंकि जो मैंने अपने घर के बड़ों से बात करी है ना, वो भी अक्सर यही कहते हैं, अरे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी हुई है। तो ये जो डरने वाला माहौल बना हुआ है ना हमारी लाइफ में, वो अभी अभी है यार, आगे जाके नहीं होगा, तो ज्यादा फिक्र नहीं करने का। और अभी के लिए मेरे मोहब्बत की गाड़ी को 90s के गियर में डालती हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैं अक्सर आपसे दाल चावल फिल्मों के बारे में जिक्र करती हूँ, यानी कि वो फिल्में जो हम कितनी बार भी देख लें बोर नहीं होते हैं, और उनमें से एक आती है वेलकम
0: मिर्ची VCR.
1: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और क्या फिल्म बनाई थी भाई, क्या फिल्म बनाई थी, इतनी बढ़िया और इतनी जबरदस्त कि हंसते हंसते पागल हो गए थे सबके सब, तब भी और आज भी पागल हो जाते हैं। ऐसी कॉमेडी, ऐसी टाइमिंग, ऐसी कास्ट, अब तो ऐसी फिल्में बनती नहीं है यार, तभी तो वेलकम की इतनी कदर है। लेकिन पता है क्या, अगर कदर को पैसों में तोला जाए ना, तो कटरीना कैफ की एक ड्रेस थी इस फिल्म में जो उन्होंने पहनी थी, एक सिल्वर कलर की ड्रेस थी। एंड ये जो उनकी सिल्वर कलर की ड्रेस थी, ये उनकी पर्सनल वार्डरोब में से निकली हुई ड्रेस थी। इसका वर्थ था 2,00,000 रुपए का, जो उनको कभी उनके किसी फ्रेंड ने, जो फैशन डिजाइनर है एमिलियो पुची, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट अ ब्रांड पर्सन, प्रोबेबली एमिलियो पुची इज फैशन की दुनिया में सम बिग पुची, एंड दैट इज एग्जैक्टली द रीजन कि ये ड्रेस का प्राइस वॉज सो हाई। हाउ स्वीट ऑफ कटरीना कि उन्होंने इस फिल्म में इस ड्रेस का इस्तेमाल करने का सोचा भी। मैं होती तो मैं इतनी महंगी ड्रेस कभी क्यों लेकर जाती यार सेट पे। एनीवेज, मुझे तो कोई फिल्म भी ऑफर नहीं कर रहा है। मगर जब अनिल कपूर को ये फिल्म ऑफर करी गई थी, तो इट वॉज अनिल कपूर हिमसेल्फ जिसने अनीस बाजमी द डायरेक्टर ऑफ दिस फिल्म उनको ये सजेस्ट किया था कि उनके कैरेक्टर का नाम मजनू भाई होना चाहिए। आई डोंट नो हाउ डिड ही थिंक ऑफ इट, बट क्या नाम रखा यार, जबरदस्त एकदम। एंड यू नो व्हाट, एक बड़ी इत्तेफाक की बात ये रही कि 1986 में अनिल कपूर ने सलमा आगा के साथ मिलकर एक पॉप एल्बम रिलीज किया था जिसमें उन्होंने गाया था, यस, और उस एल्बम का नाम था वेलकम। किसने सोचा था कि इतने सालों बाद वो एक फिल्म करेंगे और उस फिल्म का नाम भी होगा वेलकम। लेकिन इस फिल्म का नाम वेलकम हमेशा नहीं था। एक्चुअली 2004 में सलमान खान ने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया था कि वो फिरोज नादियाडवाला के साथ एक फिल्म कर रहे हैं जिसका नाम है दीवाने हुए पागल, एंड उसमें उनके ऑपोजिट कटरीना कैफ है। एंड वेल, दीवाने हुए पागल ओरिजिनल नाम था वेलकम का, जिसको लेटर ऑन टाइटल किया गया वेलकम। और इस फिल्म में सलमान खान काम करने वाले थे, लेकिन ही एग्जिटेड द फिल्म। फिर शाहिद कपूर आए, फिर इस फिल्म का नाम कर दिया गया था प्यार किए जा, और वो भी इस फिल्म से निकल गए। फाइनली अक्षय को इस फिल्म के लिए साइन किया गया और इस फिल्म का नाम रख दिया वेलकम। आई थिंक नाम में ही कोई कमी थी यार। दीवाने हुए पागल में वाकई में दीवाने हुए पागल और पिक्चर छोड़ गए, प्यार किए जा का जा पकड़ लिया और शाहिद कपूर निकल गए। जब वेलकम बोला तो कास्ट आई और फिर कभी गई नहीं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: बड़ी फिल्मों की यही प्रॉब्लम होती है, जब किसी बड़ी फिल्म में बड़ी कास्ट होती है ना, तो आपस में इस बात के झगड़े होने लग जाते हैं कि इम्पोर्टेंस ज्यादा किसको मिलनी चाहिए। ऐसा ही कुछ वेलकम के साथ भी हुआ।
0: मिर्ची चैट रूम।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड ऐसा कहा जाता है कि अनिल कपूर और अक्षय कुमार, इन दोनों के बीच में बड़े इश्यूज चल रहे थे जब इस फिल्म के क्रेडिट्स की बात की जा रही थी। हाँ, मतलब ये डिसाइड नहीं हो पा रहा था कि भाई किसको इस फिल्म के क्रेडिट्स में सबसे पहले फीचर करना चाहिए, किसका नाम सबसे पहले आना चाहिए, अनिल कपूर का आना चाहिए या अक्षय कुमार का आना चाहिए। एंड दोनों ही अपने अपने नाम के लिए वोट कर रहे थे कि मेरा आना चाहिए, मेरा आना चाहिए, कौन सीनियर है कौन नहीं है, ये सारी जो डिसएग्रीमेंट्स थी ये सब चल रही थी। बस क्या, उसी टाइम पर इस फिल्म के डायरेक्टर अनीस बाजमी ने अपना दिमाग लगाया। ही स्टेप्ड इन एंड ही सेड, दोनों में से किसी का नहीं आएगा, बोलो पेंसिल, दोनों के नाम कैंसिल, क्रेडिट में सबसे पहला नाम आएगा फिरोज खान साहब का, बिकॉज ही इज द सीनियर मोस्ट आर्टिस्ट ऑन द सेट्स ऑफ दिस फिल्म, एज सिंपल एज दैट। लेकिन आपको पता है, जब फिरोज खान इस फिल्म के लिए शूट कर रहे थे, ही वॉज नॉट कीपिंग वेल। ये वो फिल्म थी जिसको शूट करते करते ही वॉज ऑल्सो डीलिंग विद हिज कैंसर। दुनिया को इस बारे में नहीं पता था, क्योंकि हमें तो तब पता लगा जब अचानक से एक दिन खबर आई कि फिरोज खान साहब इज नो मोर अमंगस्ट अस। एंड वेलकम वाज हिज लास्ट फिल्म दैट ही डिड। इनफैक्ट जब ये फिल्म रिलीज हुई थी, उस दिन भी फिरोज खान हैड टू बी रश टू द हॉस्पिटल। लेकिन इतनी बीमारी और इतनी तकलीफ में भी उन्होंने अपना प्रोफेशनलिज्म नहीं छोड़ा, उन्होंने अपना आर्ट नहीं छोड़ा, क्योंकि आई थिंक कहीं ना कहीं एक आर्टिस्ट को ये बात पता होती है कि ये एक चीज ऐसी है, इस आर्ट की भूख ऐसी है, जो कितना भी बड़ा कोई मर्ज क्यों ना हो, वो कैंसर ही क्यों ना हो, उसके अंदर का इंसान जिंदा रखेगी। और इसी जिंदा दिली का नाम फिरोज खान था। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot. Sara zamana,
1: Sara ka deewana. Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi, it's hot.
2: हम सबको पता था कि
3: जस्सी जस्सी कोई नहीं
1: मिर्ची पे टीवी दर्शन.
2: Hi, this is me, Sara, आपकी 90s की यादों का पिटारा. And the show जस्सी जस्सी कोई नहीं was a hit. क्योंकि ये शो बात करता है अबाउट अ गर्ल हु इज अ गीक. और गीक्स को ट्रेंड में लाते हुए दिस शो ट्राइड चेंजिंग द आउटलुक के दिमाग हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता. अरमान सर पर क्रश करती जस्सी के दिलों की धड़कन के साथ हमने भी उतार चढ़ाव किए हैं यार. एंड आई रिमेम्बर कैसे वी यूज्ड टू फील बटरफ्लाइज इन आवर स्टमक जब अरमान और जस्सी के बीच कोई मोमेंट आया करता था. और सबसे सही बात अबाउट द शो वॉज कि कोई नहीं जानता था कि जस्सी रियल लाइफ में कैसी दिखती थी. एंड इट वॉज केप्ट टू बी अ बिग सीक्रेट. और उस टाइम पे तो ज्यादा टफ भी नहीं था बिकॉज पेपराज़ी एंड सोशल मीडिया तो था नहीं. और जब जस्सी का मेकओवर हुआ एंड वी गॉट टू सी मोना सिंह टू बी द फेस बिहाइंड जस्सी, ऑल वर इन ऑफ हर. और मुझे याद है कैसे हमने उस एपिसोड को किसी भी कीमत पर मिस ना करने की कसम खा ली थी. काफी शोज आए काफी शोज गए लेकिन ये बात तो सच है यार कि जस्सी जैसी कोई नहीं. यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
1: Radio Mirchi, it's hot. Mirchi, it's hot.

0: अनुराधा जी की आवाज में दिस गाना फ्रॉम द फिल्म साजन। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। अय हाय हाय, देखो पता है 90s का जमाना, तो मुझे नहीं पता कि डेटिंग के लिए कितना सेफ था और कितना यकीन कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे। आज की बात मैं जरूर कर सकती हूँ। आज के टाइम पर अगर कोई ऐसा कह दे ना कि कसम चाहे ले लो खुदा की कसम, भाई तुम किसी की भी कसम खा लो, मुझे ये पता है कि तुम्हारा डाइट फूड कसम ही है, तुम्हारा चीट फूड भी कसम ही है, और जो तुम्हारा मेन कोर्स यूजुअली तुम खाते हो वो भी कसम है। यानी कि आजकल उठते बैठते सब लोग कसम ही खा रहे होते हैं, और मुझे इस डिश पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ना ना ना ना ना ना ना ना ना, क्योंकि वो किस तरीके की कसम खा रहे होते हैं ना, हमें उसकी क्वालिटी का बिल्कुल नहीं पता है। आप क्या बोलते हो, आप कर लेते हो यकीन इस कसम नामक डिश का जो आजकल सब खाते रहते हैं?
1: सारा जमाना सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। चलो यार, ये कसमें खा के नहीं तो सुन के पेट तो काफी भर गया है। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स 90s के गानों के ज्ञान की तरफ, जहां पर दो गानों को मिक्स करके मैं चला देती हूँ और आपको पहचानना होता है कि ये जो दो गाने हैं ये है कौन से। यहाँ टेस्ट होता है आपके ज्ञान का। तो यानी कि इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट रोल है ध्यान का। तो ध्यान से सुनिए और मुझे बताइए कि ये दो गाने कौन से हैं। Here we go।

0: बस जी, अब मुझे डीएम करना है और मैं इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा और बता देना है कि ये दो गाने कौन से हैं। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट। रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।
1: मिर्ची इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: कोयला मूवी का एक गाना था, बदन जुदा होते हैं। वेल, ये गाना शायद हमें आज याद भी है और नहीं भी है, हमने कभी सुना और उसको अनसुना भी कर दिया। लेकिन इस गाने में एक म्यूजिक का पीस है जो कि मूवी में भी काफी सारे सीन्स में फिर इस्तेमाल हुआ है, और ये जो म्यूजिक का पीस है ना, ये सबसे ज्यादा इम्पैक्टफुल है। लेकिन यही म्यूजिक का पीस ओरिजिनल नहीं है बाबू मशाए।
2: मिर्ची, थग्स ऑफ फिल्मिस्तान।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और राजेश रोशन की दी गई म्यूजिक का ये जो गाना था, विच गोज दिस वे।

is actually not an original piece of music. Vangelis karke there was this music composer jisne bahut hi khoobsurat music diya hai and inke music se Rajesh Roshan aksar kafi inspired rahe hain. सिर्फ वैंगेलिस का यही म्यूजिक का पीस ही नहीं, उन्होंने काफी सारे और म्यूजिक के पीसेस भी उठाए हैं अपने गानों के लिए. एंड ये वाला जो म्यूजिकल पीस है दैट इज कॉल्ड कॉन्क्वेस्ट ऑफ पैराडाइज, व्हिच साउंड्स जस्ट ब्यूटीफुली अमेजिंग.

अगर आपके पास भी ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन है कि 90s या अर्ली 2000 की कोई फिल्म या गाने कहीं से कट कॉपी पेस्ट है तो डीएम कर दीजिएगा मुझे ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल व्हिच इज मिर्ची सारा एंड स्टे ट्यून्ड विद मी सारा आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: आज का के ड्रामा का डेफिनेशन इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 2000s का के ड्रामा।
2: आज की बात 90s के साथ।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। और ऐसा नहीं है कि हम 90s किड्स के ड्रामाज नहीं देखा करते थे। हम तो के ड्रामास तब से देखते आ रहे हैं जब से OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं आए थे इन के ड्रामास को इंट्रोड्यूस करने। और हमारे लिए के ड्रामास यूज्ड टू बी एकता कपूर के सीरियल्स, जो के से ही शुरू हुआ करते थे। राइट फ्रॉम क्योंकि सास भी कभी बहू थी टू कुसुम, कहीं किसी रोज से लेकर कसौटी जिंदगी की, यू नेम इट। और हमने ये के ड्रामास देखे हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है तब के और अब के ड्रामास में कि तब 7 फेरे 7 दिन लेते थे, और आज के ड्रामास में शादी होगी कि नहीं ये देखने को आंखें तरस जाती हैं। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर टीवी के शटर वाले कैबिनेट,
2: यादों को चिट्ठी।
1: क्या स्टार थे यार तुम ड्राइंग रूम के। हमारे घर में नहीं थे, लेकिन जिसके भी घर में मिला करते थे ना, उस घर को विजिट करते वक्त मेरा कंसंट्रेशन तुम पर ही होता था कि क्या कमाल है यार, टीवी है लेकिन इतनी खूबसूरती से छुपा हुआ। वही बात है ना कि जिस चीज में सीक्रेसी होती है ना, उस चीज को जानने की एक्साइटमेंट भी ज्यादा होती है। मुझे हमेशा लगा करता था कि ये टीवी हमारे टीवी से अलग होगा यार, लेकिन नहीं नहीं, बाद में पता लगा कि तुम वही कलर टीवी हो जो हमारे घर पर भी था, लेकिन ऐसे एक शटर वाले कैबिनेट में खूबसूरती से छिपा हुआ नहीं था हमारे घर का टीवी। तुम में रखे टीवी पर प्रोग्राम देखना ऐसा लगता था जैसे जब थिएटर में मूवी चालू होने से पहले पर्दा उठा करता था और गिरा करता था ना, वैसी सी फीलिंग आती थी अगर घर पे बैठे टीवी की स्क्रीन चालू होने से पहले तुम्हारा शटर हटाया जाता था। बड़ा ही ग्रैंड फील होता था यार। आजकल तुम्हें पता है टीवी कितने एक्सपोज्ड है, घर की दीवार पर खुलेआम टंगे रहते हैं, बेबाक और बिंदास। तुम्हारी ग्रेस की फैन, तुम्हारी सारा, जो यहाँ के अलावा इंस्टाग्राम पर भी मिल जाएगी बाय द नेम मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: काउंटडाउन शोज में बाली ब्रह्म भट्ट का जब ये गाना आया करता था तो एट दैट टाइम दिस वाज जस्ट अ मेलोडी फॉर अस। किसको पता था कि बड़े होते होते ये गाना जज्बात में तब्दील हो जाएगा।
2: मिर्ची 90s का सेट।
1: हाय, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड 90s के दौर का बाली ब्रह्म भट्ट का एल्बम का ये गाना,
3: तेरे भी जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा,
1: व्हाट अ मेलोडियस ट्रैक यार। लेकिन ये जो गाना आया करता था तो मुझे ये गाना इसके एस्थेटिक्स की वजह से अच्छा लगता था, इसके वीडियो की वजह से अच्छा लगता था, इसका म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता था, कानों में ना काफी चाशनी खोल दिया करता था। लेकिन इसके लिरिक्स पे कभी ध्यान ही नहीं गया अंटिल एंड अनलेस मैं बड़ी हुई, क्योंकि ये गाना जो है वो ये कहता है कि तेरे बिन जीना नहीं ओ मेरी जाने वफा, जिंदगी भर साथ रहकर मुझे होना नहीं है जुदा। And that is such a heartbreaking statement for anyone to make, yeah. Seriously, I mean, some people जो न जाने कितने साल एक साथ बिता देते हैं and then there comes a situation जहां उनको ये decide करना पड़ जाता है कि अब वो साथ नहीं रह सकते। मतलब वो जो रोज बातें हुआ करती थी, वो जो रोज सुबह गुड मॉर्निंग होती थी, गुड नाइट उसी की आवाज से हुआ करती थी, दिन में कुछ वक्त साथ बिताया करते थे, एक दूसरे की जिंदगी जो है वो शेयर किया करते थे एक दूसरे के साथ, अब ऑल ऑफ अ सडन वो इंसान हमारे लिए स्ट्रेंजर बन जाए, ये सबसे ज्यादा दुखदाई हो जाता है यार। खुदा ना करे कि किसी के ऊपर ऐसा कहर बरसे, लेकिन क्या है कि किस्मत भी कोई चीज है, किस्मत में जिसका जितना साथ लिखा होता है ना उतना ही बिता पाते हैं उसके साथ। बट स्टिल द पॉजिटिव वे टू लुक एट इट इज कि यार जितना बिताया क्या पता उतना भी ना होता हमारी जिंदगी में तो क्या करते, एटलीस्ट ये टाइप तो मिल गया ना जो बिता लिया है, बाकी किस्मत का लिखा और ऊपर वाले का किया, उसके कहे बिना तो यार एक पत्ता भी नहीं हिलता। चलो अब यहाँ पे बहुत काउंसलिंग हो गई है, टाइम फॉर दिस गाना। जाते जाते यही गाना आपके लिए लगाती हुई जा रही हूँ और आपसे कहती हूँ हम है रहे प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते। आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और मुझे यहाँ के अलावा ढूंढ लीजिएगा ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, कॉज इट्स हॉट।

0: Mirchi, it's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पे हेलो हेलो वेलकम. मेरा नाम है श्रेया, यानी उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया. अच्छा, मेरी और मेरी मम्मी की ना हमेशा एक बात पे आर्ग्यूमेंट होती है. मेरी मम्मी हमेशा एक चीज़ का ताना मारती है कि अरे अब तो कोई फैशन स्टेटमेंट बनता ही नहीं है. अब के जो सेलिब्रिटीज़ हैं, अब के जो हीरो हीरोइन हैं, उनकी इतनी पॉपुलैरिटी होती ही नहीं है जो हमारे टाइम पे होती थी. मतलब अगर शर्मिला टैगोर ने कुछ पहन लिया, शबाना आज़मी ने कुछ पहन लिया, या हेमा मालिनी ने कुछ पहन लिया, वो हम सारी लड़कियां कॉलेज में फॉलो करते थे. तो मैंने सोचा कि चलो अगर ऐसी ही बात है तो ज़रा ढूंढा जाए कि आखिर किस किस ने, कौन कौन सी हीरोइंस ने एक्चुअली में कुछ फैशन स्टेटमेंट्स को पॉपुलर किया और वो आज तक फॉलो होता है, जैसे कि शर्मिला टैगोर. अभी बताऊंगी, वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 98.3 98.3 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

ये बेल बॉटम पैंट्स जो हम लड़कियों को बहुत पसंद है ना आजकल, ये एक्चुअली में सबसे पहले पता है कौन लाया था? शर्मिला टैगोर। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। शर्मिला टैगोर ने कई सारी अपनी फिल्मों में ना ये बेल बॉटम पैंट्स पहने, और उसके बाद मेरी मम्मी बताती हैं कि कॉलेज में लड़कियां वही पहन करके आती थी, उनका वाला विंग लाइनर लगा करके। नॉट जस्ट दैट, बहुत सारे जो कुर्ताज जो कि फ्लारी प्रिंट वाले होते हैं ना, वो भी सबसे पहले शर्मिला जी लेकर के आई थी। पुरानी जीन्स पे ना आज मैं वो हीरोइंस के सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स ढूंढ करके लाई हूँ जो उस जमाने में पहने गए या उस जमाने में किए गए और आज तक हम उसे फॉलो करते हैं। सो कम राइट बैक, अभी बताऊंगी हेमा मालिनी जी का फैशन स्टेटमेंट।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: ओवरसाइज सनग्लासेस हम सबके पास कहीं ना कहीं पड़े होंगे जो कि you know, बहुत ही कूल लगते हैं आजकल. लेकिन आपको पता है कि ओवरसाइज सनग्लासेस, ग्लेयर्स, गॉगल्स या जो भी कह लो, वो सबसे पहले पता है कौन सी हीरोइन ने पहने थे? हेमा मालिनी जी ने. पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया. मैं बता रही थी ना कि एक दिन मेरी और मम्मी की बहुत आर्ग्यूमेंट हो रहे थे, तो मम्मी ने मुझसे कहा कि श्रेया, जो भी फैशन स्टेटमेंट तुम लोग आज करते हो ना, वो हमारे टाइम की हीरोइंस ने किए थे और हम सब लड़कियां कॉलेज में या हॉस्टल में फॉलो किया करते थे. तो जब मैंने जाकर के थोड़ी रिसर्च की और इसके बारे में पढ़ा, तो मुझे पता चला कि जो ओवरसाइज एकदम आधे चेहरे को ढकने वाले जो सनग्लासेस है ना, वो सबसे पहले ड्रीम गर्ल यानी हेमा मालिनी जी इंडस्ट्री में लेकर के आई थी. एंड नॉट जस्ट दैट, वो वाइब्रेंट कलर्स, ऑरेंज, चटक ग्रीन, ये भी उनपे बहुत खूबसूरत लगता था. प्रिंटेड लहंगास, पहले जो हीरोइंस थी वो एक्चुअली में मोनो कलर पहनती थी यानी सिंगल कलर, लेकिन हेमा मालिनी जी अपने फैशन के साथ खूब एक्सपेरिमेंट करती रहती थी. सो प्रिंटेड लहंगास भी उन्होंने सबसे पहले शुरू किए थे. सो अभी मैं बताऊंगी कि रेखा जी से कौन सी चीज सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई थी. वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स.
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है.

दो चोटी चटक रेड लिपस्टिक के साथ। मम्मी बताती है कि उनके हॉस्टल में ना एक टाइम के बाद सारी लड़कियां दो चोटी और साड़ी पहन के आती थी, दो चोटी और सूट पहन करके आती थी और उस पे रेड लिपस्टिक, पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और मैं बता रही थी ना कि कैसे एक दिन मेरी और मम्मी का आर्ग्यूमेंट हो रहा था, तो मम्मी ने कहा कि आपके जमाने के हीरो हीरोइंस क्या स्टाइल स्टेटमेंट लाएंगे, फैशन स्टेटमेंट लाएंगे, जो हमारे टाइम की हीरोइंस लेकर के आती थी और हम सब उसे फॉलो करते थे। सो खूबसूरत फिल्म अगर आप देखो, सिलसिला देखो, आपको रेखा जी दो चोटियों में दिखेंगी और वो भी साड़ी पे दो चोटियाँ। सो मम्मी बताती है कि जैसे ही खूबसूरत फिल्म आई रेखा जी की, सिलसिला आई जिसमें वो एकदम ब्यूटीफुल कलर की लिपस्टिक लगाई है ना, हर लड़की कोशिश करती है बन के ठन के आने की। वैसे रेखा जी के ना और भी स्टाइल स्टेटमेंट्स थे जो पॉपुलर हुए, बताऊंगी उनके बारे में भी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3 मिर्ची इट्स हॉट।

Mirchi, it's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

ज्योमेट्रिक प्रिंस इन्होंने सिलसिला में भी पहने पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया और आज ना उस जमाने की हीरोइंस के लाए हुए फैशन स्टेटमेंट्स जो हम आज तक इस जमाने में फॉलो करते हैं ना, वो ढूंढ करके लाई हूँ मैं। सो रेखा जी ना ज्योमेट्रिक प्रिंस पहनती थी और जंप सूट्स जो आजकल हमें बहुत पसंद है एक्चुअली में सबसे पहले रेखा जी ने पहने थे। खूबसूरत फिल्म ले लो, सिलसिला ले लो, एंड सो मैनी ऑफ देम भाई। शी वॉज नोन फॉर हर बोल्ड लुक्स और फिर उनकी रेड चटक लिपस्टिक। ओहो वैसे रेखा जी की बिंदी भी ना बहुत पॉपुलर हुई थी, वो ब्लैक वाली भी और रेड वाली भी जो उन्होंने सिलसिला में लगाई है। आज ना ऐसी वो सारी हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स जो कि पूरे इंडिया में रेज बन गए थे, हर लड़की फॉलो कर रही थी, हर लड़की जो कॉलेज गोअर थी, हर लड़की जो हॉस्टल में रहती थी, हर लड़की वेल आज पुरानी जीन्स पे अगला किसका बताऊंगी। हाउ अबाउट जीना तमान? तो वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

Mirchi. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

डिंपल कपाड़िया के दो क्यूट जूड़ाज। आपको पता है किस नाम से फेमस हुए थे? बॉबी जूड़ाज। पुरानी जीन्स पे हाय, मैं हूँ श्रेया। तो मैं बता रही थी कि कैसे मेरी मम्मी ना उस दिन मुझे बता रही थी कि उनके टाइम पे भाई फैशन स्टेटमेंट्स जो हीरोइंस लेकर के आती थी वो हर लड़की फॉलो करती थी, और स्पेशली मम्मी के कॉलेज और हॉस्टल में तो डेफिनेटली फॉलो होते थे। सो शी वाज टेलिंग मी कि डिंपल कपाड़िया जब बॉबी फिल्म में आई, अगर आप देखो ना फिल्म, तो उन्होंने कई सीन्स में दो क्यूट जूड़ा बनाया है, मतलब एकदम मिडिल पार्टिंग करके अपने बालों के साथ। शी सेड कि वो इतने फेमस हुए कि हम सारी लड़कियां कॉलेज में ना वो छोटे छोटे जूड़े बना के जाते थे। वैसे जीनत अमान और किस चीज के लिए पॉपुलर हुई थी अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मिनी ड्रेसेस ले लो, जंपसूट्स ले लो, हॉल्टर नेक ले लो या फिर शिमरिंग साड़ी ले लो, ये सब लाने वाली थी जीनत अमान पुरानी जीन्स पे। मेरा नाम है श्रेया, जो उस जमाने की हीरोइंस के फैशन स्टेटमेंट्स, स्टाइल स्टेटमेंट्स की भी बात कर रही है जो इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। सो जीनत अमान ने कई सारी फिल्मों में जंपसूट्स तो पहने ही हैं, साथ में मिनी ड्रेसेस, जो उस टाइम हीरोइंस बहुत कम पहनती थी, वो जनरली साड़ीज में ज़्यादा दिखा करती थी। पर जीनत अमान ऑफकोर्स बहुत ही बोल्ड हीरोइन मानी जाती थी, तो शी वॉज द वन जो एक्चुअली में मिनी ड्रेसेस लेकर के आई थी हमारी इंडस्ट्री में, और उसके बाद ना लड़कियों ने उन्हें जम करके फॉलो किया था। वैसे ये डिस्को ईरा वाला वो जो शिमरिंग ड्रेस है जो हम पार्टीज में पहनने की कोशिश करते हैं, ये कौन लाया था अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हेलेन इतना एक्सपेरिमेंट करती थी अपने कॉस्ट्यूम्स के साथ, आज तुम हर पार्टी में वो शिमर वाली ग्लिटर वाली ड्रेस पहनने की कोशिश करते हो ना टू स्टैंड आउट। एक्चुअली में हेलेन जी ने ये शुरू किया था क्योंकि उन्होंने फिल्मों में बहुत सारे कैबरी सॉन्ग्स किए हैं ना। आशा ताई की आवाज होती थी, हेलेन जी का ग्लैमरस सेंसुअल डांस होता था और साथ में उनकी एकदम सीक्वेंस वाली शिमर वाली ड्रेस होती थी। कई बार तो वो फेदर्स को भी अपने बालों में लगा लेती थी, विच लुक सो क्यूट। सो पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं। श्रेया के पास होंगे, सो कम राइट बैक।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

मुमताज साड़ियां तो आज भी चलती हैं पुरानी जीन्स पे। हाय, मैं हूँ श्रेया। और आज ना उस जमाने की हीरोइंस जो फैशन स्टेटमेंट लेकर के आई जो इस जमाने तक चलते हैं, बस उनकी बात हो रही है। सो एक तो मुमताज जी साड़ियों को एक डिफरेंट तरीके से ड्रेप करने का फैशन लेकर के आई थी। उनकी जनरली साड़ी स्पेशली इन द सॉन्ग बिंदिया चमकेगी, अगर आप ये गाना देखोगे ना तो उन्होंने ऑरेंज कलर की साड़ी पहनी है, सैफ्रन कलर है राधा, और उसको ना राउंड राउंड राउंड करके उन्होंने पहना है और उसपे उन्होंने सिल्वर कलर की बिंदी लगाई है। मेरी मम्मी बताती हैं कि ये जो साड़ी थी वो मुमताज साड़ी के नाम से फेमस हुई। और मुझे लगता है कि आज भी जब हम वो रेडीमेड साड़ीज लेते हैं या फिर ऐसे ड्रेप कराते हैं ना, अगर आप किसी सैलून में जाओ, आप एक्चुअली में अगर बोलोगे कि मुमताज साड़ी की तरह ड्रेप कर दो तो स्टाइलिस्ट को पता चल जाता है कि उन्हें कौन सी साड़ी आपको पहनानी है। That was the craze. So, पुरानी जीन्स पे ना आज उस जमाने की हीरोइंस जो ऐसे फैशन स्टेटमेंट्स लेकर के

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: 98.3
0: मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पोल्का डॉट्स, बाप रे, ये तो मुझे लगता है शर्मिला जी ने भी पॉपुलर किया है और मुमताज जी ने भी, हेमा मालिनी ने भी कई सारी फिल्मों में पोल्का डॉट्स पहने पुरानी जीन्स पे, आप हो श्रेया के साथ। एंड पोल्का डॉट्स आज भी इतने क्यूट, इतने चिक, इतने सुंदर लगते हैं, इतने कूल लगते रादर। और ये जो प्रिंट था ना, ये हर हीरोइन ने पॉपुलर किया था, फिर चाहे वो शर्मिला जी हो, हेमा मालिनी हो, नीतू सिंह हो या फिर मुमताज हो। सो आज ना उन्हीं फैशन स्टेटमेंट्स की बात हो रही है जो उस जमाने में आए और इस जमाने तक हम फॉलो करते हैं। वैसे वापस आओ, कौन सा हेयर स्टाइल था जो एक्चुअली में एक हीरोइन के नाम पे इतना पॉपुलर हुआ कि आज भी हम सैलून जा करके कहते हैं कि हमें ये वाला हेयर स्टाइल, इस हीरोइन का हेयर स्टाइल चाहिए। बताऊंगी वापस आओ श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट
2: मिर्ची इट्स हॉट
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे आनंद बाबू,
1: आइए आइए आनंद बाबू, आप और इस मंदिर में मुझे पहचाना नहीं?
2: गाइए ना, आप रुक क्यों गए?
3: गाओ ना बेटी, गाओ
2: गाओ।

बैंग्स कह लो, फ्रिंज कह लो, ये सब लाने वाली थी साधना जी पुरानी जीन्स पे। आप हो श्रेया के साथ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट वो सारे स्टाइल स्टेटमेंट्स जो उस जमाने की हीरोइंस लाई और हमने इस जमाने तक आज तक हम उनको ट्राई करते हैं, उनको पहनते हैं। इनका माथा बहुत चौड़ा था तो एक्चुअली में डायरेक्टर साहब ने इनसे कहा था कि ये ना अपने माथे को ढकने के लिए कुछ आगे के बाल कटवा लें, और साधना जी ने जब ये किया तो उनकी स्टाइल इतनी फेमस हुई कि कॉलेज की हर लड़की उस समय बैंग्स, तब ये बैंग्स नहीं कहे जाते थे, इनको साधना हेयर कट कहा गया था जो आज भी इस नाम से चलता है। कभी कभी हम इन्हें बैंग्स कह देते हैं, कॉलेज की हर लड़की। हाँ, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज सेइंग, फोरहेड पे थोड़े से बाल कटवा करके साधना कट ही लेके घूमती थी। पुरानी जीन्स पे आज उस जमाने की फैशन की बातें हो रही है तो बस कहीं भी मत जाना।